0: স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্তের কণ্ঠে শুনলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত আকাশবাণী কলকাতা।
1: সেবা মতলব লোগো কে সাথ খড়ে রহনা, উনকে জীবন মে বদলাব কে সাথী বননা। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पूरे बंगाल में मनाया जा रहा है सेवा संकल्प अभियान।
2: इस अभियान के अंतर्गत हैं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे 17 सितंबर शाम 7 बजे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और उनके परिवार एक साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से लेंगे आशीर्वाद का दिया का विशेष संकल्प।
1: मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा में छात्र छात्राओं के लिए ड्रॉइंग और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
2: नमो सेवा लाभार्थियों की अनकही कहानी में नाट्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन कल्याण की कहानियां सामने आएंगी।
1: आंगन मिलन सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण, स्वास्थ्य और महिला केंद्रित जन कल्याण कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
2: और सेवा की कहानी के माध्यम से लाभार्थियों के वास्तविक अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां वीडियो रील्स के जरिए लोगों तक पहुंचेंगी।
1: 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से गठन होगा विकसित भारत 2047 का संकल्प, जिसकी अगुवाई करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
2: इसके साथ ही सेवा में योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा के रंग देश के संग और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसे अनेक जन कल्याण मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
1: ये सभी कार्यक्रम जन भागीदारी, सेवा, इनोवेशन, जन कल्याण और देशभक्ति को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
2: आइए सेवा के संकल्प से जुड़े देश प्रेम की इस पहल में अपना योगदान दें।
1: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।
3: जाना और जाना।
4: जाना और जाना आज सुनबेन जालानी पर्व शिरोनामे तीन पर्वेर धारावाहिक कथिकार तृतीय तथा शेष पर्व। बोलछेन डॉक्टर देबारुती मित्र।
5: ভাবুন, গ্রামের কোনো খামারে জমে থাকা গোবর, ফসল কাটার পর মাঠে পড়ে থাকা কৃষিজ বর্জ্য কিংবা শহরের কিছু জৈব বর্জ্য, যেগুলিকে আমরা সাধারণত আবর্জনা হিসেবে দেখি, সেগুলি যদি গাড়ি চালানোর জ্বালানিতে পরিণত করা যায়, শুনতে অদ্ভুত লাগলেও প্রযুক্তির সাহায্যে এটা কিন্তু সম্ভব। আর এখানেই আসে অন্যান্য অপ্রচলিত জ্বালানির কথা। সিএনজি ও এলএনজির সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। প্রচলিত পেট্রোল ও ডিজেলের তুলনায় এগুলি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জ্বালানি, কিন্তু বায়োগ্যাস থেকে তৈরি কম্প্রেস বায়োগ্যাস বা সিবিজিও

0: আবার একটু বাংলা ছবির দিকে ফিরে আসি নাকি?
1: আমরা একটু বাংলা ছবির দিকে ফিরে আসি, তার আগে আমরা চলে যাই একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে, তারপর ফিরে আসি।
2: इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पूरे बंगाल में मनाया जा रहा है सेवा संकल्प अभियान।
3: इस अभियान के अंतर्गत हैं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे 17 सितंबर शाम 7 बजे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और उनके परिवार एक साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से लेंगे आशीर्वाद का दिया का विशेष संकल्प।
2: मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा में छात्र छात्राओं के लिए ड्रॉइंग और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
3: नमो सेवा लाभार्थियों की अनकही कहानी में नाट्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन कल्याण की कहानियां सामने आएंगी।
2: आंगन मिलन सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण, स्वास्थ्य और महिला केंद्रित जन कल्याण कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
3: और सेवा की कहानी के माध्यम से लाभार्थियों के वास्तविक अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां वीडियो रील्स के जरिए लोगों तक पहुंचेंगी।
2: 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से गठन होगा विकसित भारत 2047 का संकल्प, जिसकी अगुवाई करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
3: इसके साथ ही सेवा में योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा के रंग देश के संग और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसे अनेक जन कल्याण मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
2: ये सभी कार्यक्रम जन भागीदारी, सेवा, इनोवेशन, जन कल्याण और देशभक्ति को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
3: आइए सेवा के संकल्प से जुड़ें, देश प्रेम की इस पहल में अपना योगदान दें।
2: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।

0: শুনছেন গীতাঞ্জলি ক্রীড়াঙ্গন, স্টুডিওর বাইরে থেকে রেকর্ড করে আনা একটি অনুষ্ঠান শুনে নেব আমরা।
1: আজ শুনবেন কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ডার্টস প্রতিযোগিতার উপর ভিত্তি করে একটি বেতার প্রতিবেদন। এই প্রতিযোগিতায় জাপান, নেদারল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার প্রতিযোগীরাও অংশ নেয়। পুরুষ বিভাগে বাজিমাত করেছেন জাপানি খেলোয়াড় বিন তোময়ো। মহিলা বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন ভারতীয় খেলোয়াড় মহিমা গৌতম। রানার্স হয়েছেন টিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। যুব বিভাগে বিজয়ী হয়েছে যুবরাজ, প্রথমবার প্রতিযোগিতায় এসে বাজিমাত করল। প্যারা বিভাগেও ভালো ফল করেছেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। এই প্রতিযোগিতার আসরে হাজির ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি রতন কুড়ি। তিনি কথা বলেছেন খেলোয়াড় ও অন্যান্যদের সঙ্গে। প্রথমে শুনুন যুব বিভাগে বিজয়ী যুবরাজ কি বলছেন।
2: কলকাতা খেলনে সোহিত গৌতম কে সামনে মে ফাইনাল মে 3-1 সে জিতা হুম বহুত আচ্ছা লাগা জিত কে পহলি বার মেনে খেলা হ্যায় কোই চ্যাম্পিয়নশিপ ওর মে পহলি বারি মে হি জিত গিয়া হুম পাপা ভিরল দুজরেজা মেরে পাপা ভি মুঝে বহুত সাপোর্ট করতে হ্যায় ওর মেরি ফ্যামিলি ভি মুঝে বহুত সাপোর্ট করতে হ্যায় ডার্ট কে রিলেটেড ইসলিয়ে মে ইতনা আচ্ছা খেল পা রহা হুম ওর মেরে কোচ হ্যায় ভিক্কি স্যার বস বহুত আচ্ছা লাগা মুঝে ইয়ে ওর মে রিপ্রেজেন্ট করনা চাহতা হুম ইন্ডিয়া কি তরফ সে ওয়ার্ল্ড লেভেল পে और सेलिन दिसिक जो मेरे कोच हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया हेड कोच है वो मेरे जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ने में
3: मेरा नाम विकी पटेल है और मैं युवराज दुदरेजिया का बैक सपोर्ट में सपोर्ट कर रहा हूँ। उनके कोच है सैयेंद्र दीक्षित जो आ नहीं पाए यहाँ पे कोई रीजन से, तो मैं बैक सपोर्ट कर रहा हूँ और वो बहुत अच्छा खेला और आगे भी वो इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करना है तो इसलिए वो आगे और मेहनत करेगा और बढ़िया खेलेगा। डार्ट्स क्लब में हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं और डार्ट्स क्लब के मेम्बर भी हम और शैलेंद्र सर जो है उनके कोच, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। एवरी मैच खत्म होने के बाद जो भी हो रहा है कि भाई आपने क्या गलती किया क्या नहीं किया वो सब उनका बहुत सपोर्ट रहा है। उनके फादर है विरल दुदरेजिया, अभी जो टाइटल मारा है जो यूथ अंडर 18 में नेशनल चैम्पियनशिप अभी वो विन किया तो उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे भी वर्ल्ड लेवल पे हम उसको देखना चाहेंगे कि भाई इंडिया का नाम वो आगे जाके रोशन कर। जो टाइटल दिया है बहुत बड़ी बात है, 3 महीने से खेल रहा है डार्ट्स क्लब में और उसने आके यहाँ पे फर्स्ट टाइम उसका फर्स्ट ही नेशनल था कोलकाता में टाइटल मारा है तो हमारे लिए बहुत
4: एक नई शुरुआत है डार्ट्स का। इंडिया में एक नया दौर चालू होने वाला है उसका एक संकेत है। बहुत ही अच्छे स्तर पे एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता यहाँ पे रखी गई है। बहुत खुश नसीब है और बहुत अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि भारत एक मौका मिला है। आशा यही करेंगे कि आगे आने वाली जो भी प्रतियोगिताएं होंगी उसमें जरूर से भाग लेंगे और भारत का नाम रोशन होता है। जय हिंद जय भारत।
5: सर मेरा नाम शोभित सक्सेना है और मैं एक पैरा डार्ट्स प्लेयर हूँ यहाँ कोलकाता में। 10 से 12 सितंबर में जो इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ है उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले मैं शूटिंग में पार्टिसिपेट किया था। यहाँ मैंने अपने ही यूपी के जो मेरे कॉम्पिटिटर थे दीपक त्रिपाठी जी उनके साथ मेरा अच्छा मैच हुआ कॉम्पिटिटर

0: अच्छे थे वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरे से हार गया। अच्छा रिजल्ट ये रहा कि मैं गोल्ड मेडल रहा और दीपक जी जो है वो सिल्वर मेडलिस्ट। हाँ जी, 3-0 से मैंने कॉम्पिटिशन को जीता है। डांस सेंटर्स एक्चुअली मैं शूटिंग करता ही, उसमें शूटिंग का ही गेम है, कॉन्सेंट्रेशन का गेम है, जो मैंने एक साल पहले से स्टार्ट किया है। और एक इंटरनेशनल इवेंट अभी अप्रैल में मलेशिया में हुआ था, जिसमें भी मैं ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया हूँ। अपने देश को रिप्रेजेंट किया था मैंने, और उसके बाद मुझे ये मौका मिला है कि मेरे भारत देश में ही कोलकाता सिटी में हार्ट ऑफ जॉय जिसे बोलते हैं, उसमें मुझे ये पहला फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल ओपन चैंपियनशिप खेलने को मिली, जिसमें मैंने मेडल हासिल किया, गोल्ड मेडल। मेरा रिएक्शन, मेरा गोल है अभी ओलंपिक्स में जाने का, ओलंपिक तक खेलने का।
1: मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार त्रिपाठी है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और ये पैरा डॉट्स जो भारतवर्ष में पहली बार कोलकाता में ओपन हो रहा है, इसमें मैंने सेकंड पोजीशन सिल्वर मेडल लिया है। 2 महीने पहले अप्रैल में मलेशिया से भी खेल के आया हूँ, वहाँ से मैंने ब्रॉन्ज मेडल लेके आया था। और मैं पेशे से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ नेहरूग्राम भारती यूनिवर्सिटी में, जो प्रयागराज में स्थित है, और मैं इसी डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट में हूँ जहाँ पर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे पढ़ते हैं, और हियरिंग इम्पेयर्ड टीचर्स को मैं तैयार करता हूँ जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ा सकें, चाहे वो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयर्ड, चाहे वो बीएड इन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयर्ड हो, चाहे वो एमएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, या चाहे वो पीएचडी इन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट हो। मेरे अंडर में 4 बच्चे पीएचडी कर चुके हैं, अभी रिसेंटली 1 सप्ताह के अंदर मेरे अंडर में 1 बच्चा दिव्यांग, वो भी दिव्यांग ही है, उसको मैं पीएचडी करा रहा हूँ। मैं तो बहुत दिनों से नहीं खेल रहा हूँ, मैं 1 वर्ष से खेल रहा हूँ, मात्र 1 वर्ष से खेल रहा हूँ, और 1 वर्ष में ही मैंने नेशनल खेला। नेशनल में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा, और जो नोएडा में उदेश पे हुआ था, उसके बाद मैं मलेशिया गया, वहाँ पे मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके आया, और यहाँ पे कोलकाता में आया तो मेरा सेकेंड पोजिशन आया, जिसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला।
2: महिमा गौतम है, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट है उन्नाव मेरा। मैं कोलकाता में खेलने आई थी, फर्स्ट इंटरनेशनल डार्ट्स था, और मैं फाइनल जीती हूँ। मेरा फाइनल हुआ है अभी, ओनेंट मेरी थी टिया बनर्जी, एंड मैं मतलब विन कर गई हूँ, और हाँ मैं 0 से विन करी हूँ, और मतलब की गेम लेवल हाँ ठीक था, मतलब की ओके था, बट लेकिन 0 से जीती हूँ तो अच्छा है, 5-0 से जीती हूँ मैं। फ्यूचर मेरा बस यही एम है कि मैं WDF में अपना वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहती हूँ।
3: हेलो, আমার নাম হলো টিয়া ব্যানার্জি, আমি এই রানার্স আপ হয়েছি ইন উইমেন সিঙ্গলস ক্যাটাগরি ইন দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডার্টস ফেডারেশন ইন কলকাতা। আই লস্ট টু মহিমা গৌতম, শি ইজ আ ইউপি স্টেট চ্যাম্পিয়ন, আই লস্ট টু হার ইন দ্য ফাইনালস, আর ফাইনালসে খুব ভালো খেললো, আর আমি রানার আপ হলাম।
4: সকাটা দাও ফেলে, সকাটা দাও ফেলে, নতুন জীবন পেলে হব, সকাটা দাও ফেলে, নতুন জীবন পেলে হব।
0: শান্ত সাহা, সেকেন্ড অল ইন্ডিয়া ডার্টস অ্যাসোসিয়েশন। ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডার্টস টুর্নামেন্ট হলো, এটা ওয়ার্ল্ড ডার্টসের সিলভার ক্যাটাগরি টুর্নামেন্ট, এটা $10,000 US প্রাইজ মানি ছিল, সিনিয়র মেন্স, সিনিয়র লেডিস, under 23 boys, under 23 girls, under 18, under 18 girls, 6টা ইভেন্ট ছিল। এছাড়া আমরা 2টো পেয়ার স্পেশাল ইভেন্ট করেছিলাম, মেন সিঙ্গলস মিক্স ডাবলস, আর এবার প্যারাও আমরা টুর্নামেন্ট করলাম। মেন সিঙ্গলস উইনার পেয়েছে $2,000, আর লেডিস সিঙ্গলস উইনার পেয়েছে $800। এটা 3 দিনের কম্পিটিশন ছিল, 10, 11, 12, এটা থেকে মেনলি যারা উইনার রানার হবে তারা ডাইরেক্টলি ওয়ার্ল্ড মাস্টার টুর্নামেন্টে চান্স পাবে। এটা সবচেয়ে বড় সিগনিফিকেন্ট যে এত ভালো একটা প্রথম ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট খেলার সুযোগ পেল ফরেন প্লেয়ার এবং ইন্ডিয়ান প্লেয়ার। থ্যাংক ইউ। এই টুর্নামেন্টে অ্যারাউন্ড 150 পার্টিসিপেন্ট ছিল, তো 3 দিনের টুর্নামেন্টে সবাই ভালো করে, বিদেশ থেকে জাপানি যে মেইন টোমোয়া গোটো মেন সিঙ্গলসে উইনার হচ্ছে।
5: এতক্ষণ শুনছিলেন কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ডার্টস প্রতিযোগিতার উপর ভিত্তি করে একটি বেতার প্রতিবেদন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও সম্পাদনায় রতন কুড়ি, প্রযোজনা আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের ক্রীড়া বিভাগ, প্রযোজক হর্ষ পাণ্ডে। অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ হল।
6: একটি সংশোধনী, মোহনবাগান 3-2 ফলাফলে মোহামেডানকে হারিয়ে লিগ চ্যাম্পিয়ন হল। ইতিপূর্বে আমরা 5-1 ফলাফল ঘোষণা করেছিলাম, এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। আট বছর পর খরা কাটল, চ্যাম্পিয়ন হল মোহনবাগান। দশ জনের মোহনবাগানের দুরন্ত প্রত্যাবর্তন। সবুজ মেরুন দশজন হয়ে যাওয়ার পর এবং এক দুই এই ফলাফলে পিছিয়ে পড়ার পরেও শেষমেশ মোহামেডানকে 3-2 হারিয়ে কলকাতা লীগ চ্যাম্পিয়ন হল মোহনবাগান। আট বছর পর অবশেষে খরা কাটল, ম্যাচের সেরা হলেন সাহাল আব্দুল সামাদ। এই ম্যাচে জোড়া গোল করেন তিনি। মোহনবাগানের জয়ে উচ্ছ্বাসে ভাসছে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজার পর তারা সবুজ মেরুন ফুটবলাররা উচ্ছ্বাসের রঙে রাঙিয়ে ওঠে।

0: অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছে ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ
1: মন্ত্রণালয়।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी शुद्धता झलकती थी हाँ? माटी भी तंदुरुस्त और लोग पहली वाली बात कहाँ
2: परम तो सब यही डाले हैं
1: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं
2: सच है
1: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं
2: ठीक है भाई मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে।
1: सेवा मतलब लोगों के साथ खड़े रहना, उनके जीवन में बदलाव के साथी बनना। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पूरे बंगाल में मनाया जा रहा है सेवा संकल्प अभियान।
2: इस अभियान के अंतर्गत हैं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे 17 सितंबर शाम 7 बजे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और उनके परिवार एक साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से लेंगे आशीर्वाद का दिया का विशेष संकल्प।
1: मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा में छात्र छात्राओं के लिए ड्रॉइंग और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
2: नमो सेवा लाभार्थियों की अनकही कहानी में नाट्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन कल्याण की कहानियां सामने आएंगी।
1: आंगन मिलन सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण, स्वास्थ्य और महिला केंद्रित जन कल्याण कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
2: और सेवा की कहानी के माध्यम से लाभार्थियों के वास्तविक अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां वीडियो रील्स के जरिए लोगों तक पहुंचेंगी।
1: 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से गठन होगा विकसित भारत 2047 का संकल्प, जिसकी अगुवाई करेंगे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
2: इसके साथ ही सेवा में योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा के रंग देश के संग और सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जैसे अनेक जन कल्याण मूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
1: ये सभी कार्यक्रम जन भागीदारी, सेवा, इनोवेशन, जन कल्याण और देशभक्ति को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
2: आइए सेवा के संकल्प से जुड़े देश प्रेम की इस पहल में अपना योगदान दें।
1: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित
0: आकाशवाणी कोलकाता अनुष्ठान सुनछेन गीतांजलि प्रचार तरंगे। एखन स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा टाइम।

0: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে।
1: সেবা মতলব লোগো কে সাথ খড়ে রহনা, উনকে জীবন মে বদলাব কে সাথী বননা। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पूरे बंगाल में मनाया जा रहा है सेवा संकल्प अभियान।
2: इस अभियान के अंतर्गत हैं कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे 17 सितंबर शाम 7 बजे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और उनके परिवार एक साथ दीप प्रज्वलन के माध्यम से लेंगे आशीर्वाद का दिया का विशेष संकल्प।
1: मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा में छात्र छात्राओं के लिए ड्रॉइंग और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
2: नमो सेवा लाभार्थियों की अनकही कहानी में नाट्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन कल्याण की कहानियां सामने आएंगी।
1: आंगन मिलन सेवा के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण, स्वास्थ्य और महिला केंद्रित जन कल्याण कार्यक्रमों में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
2: और सेवा की कहानी के माध्यम से लाभार्थियों के वास्तविक अनुभव और

0: पादक जॉन ल्यूक पोंटी के साथ संगति करते हुए प्रस्तुतियां देते हुए आप पूरी दुनिया में छा गए। बाद में आप लंदन गए और वहां आपने फ्यूजन संगीत समूह ब्लू फायर की स्थापना की, जिसके एल्बम ब्रेथ टेकर ने दुनिया भर की वाहवाही लूटी। 7 एवं 11 तारों वाले इलेक्ट्रिक वायलिन पर वादन करते हुए सुर, ताल और विभिन्न संगीत शैलियों के सम्मिश्रण में नए आयाम तलाशने वाले आप अपने नवोन्मेषी दृष्टिकोण के लिए खूब जाने जाते हैं।
1: श्री एस हरी कुमार इज अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिशियन फ्रॉम केरला हु हैज मेड हिज मार्क अक्रॉस कर्नाटिक, हिंदुस्तानी एंड वेस्टर्न म्यूजिकल ट्रेडिशंस। बोर्न इन 1980, हरी कुमार बिगैन लर्निंग द वायलिन फ्रॉम हिज फादर एट द एज ऑफ 7 एंड गेव हिज फर्स्ट रिसाइटल एट द एज ऑफ 9। He went on to receive training from renowned musicians, including late Anandalakshmi Venkataraman, late Chalakudi Narayana Swami, and Dr. L. Subramaniam. His musical accomplishments were recognized early, with Hari Kumar earning the Akashwani A grade by the age of 18. His musical journey has taken him across the world, with performances and collaborations with celebrated artists such as Tabla Maestros Pandit Kishan Maharaj and Anindo Chatterjee, as well as Western violinist Jean-Luc Ponty. He later moved to London, where he founded the fusion ensemble Blue Fire, whose album Breathtaker received acclaim in the world music scene. Known for his innovative approach, Hari Kumar also performs on electric violins with 7 strings and 11 strings, exploring new dimensions in melody, rhythm and cross-genre music.
0: कार्यक्रम में संगत वाद्यकार हैं मृदंगम पर श्री चंगना शेरी के आर जैन और घटम पर श्री अंचल एच कृष्ण अय्यर।
1: In tonight's program, he will be accompanied by Shri Changana Shiri K. R. Jain on the mridangam and Shri Anjal H. Krishna Iyer on the ghatam.
0: Shri S. Hari Kumar apne violin vadan ki shuruaat Sant Tyagaraj ke ek panchratna kirtan Jagadananda Karaka se kar rahe hain. Raag hai nata, taal adi.
1: Shri S. Hari Kumar begins his violin recital with Jagadananda Karaka, a panchratna kriti by Tyagaraja in the raag nata, set to adi taalam.

0: आगे प्रस्तुत है आर वेणुगोपाल की रचना सरिसमाना, जो राग विटपी और आदिताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू सरिसमाना, अ कॉम्पोजिशन ऑफ आर वेणुगोपाल इन द राग विटपी सेट टू आदितालम।

0: आगे पेश है कृति सरस्वती नमोस्तुते, जी एन बालसुब्रमण्यम की रचना जो राग सरस्वती और आदि ताल में निबद्ध है।
1: The next item is Saraswati Namostude. In the rag Saraswati, set to Rubaka Talam, composed by G.N. Balasubramaniam.

0: अब आप सुनेंगे कृपया पालया, महाराज स्वाति तिरुनाल की रचना, जो चारुकेशी राग और मिश्र चाप ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to Kripaya Palaya, a composition of Shri Swati Tirunal in the rag Charukeshi set to Mishra Chapu Thalam.

0: ये था तनिया वर्तनम। इसे प्रस्तुत किया मृदंगम पर श्री चंगनाशेरी के आर जैन और घटम पर श्री अंचल एच कृष्ण अय्यर ने। श्री एस हरिकुमार अपने वायलिन वादन का समापन महाराज स्वाति तिरुनाल द्वारा रचित एक तिल्लाना से कर रहे हैं, जो धनाश्री राग और आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Tani Avartanam played on the Mridangam by Shri Changanasheri K.R. Jayan and on the Ghatam by Shri Anjal H. Krishna Iyer. Shri S. Harikumar concludes his violin recital with a Tillana composed by Shri Swadi Tirunal in the Raga Dhanashri set to Adi Talam.

0: के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आज अब यहीं संपन्न होता है। इसमें आज आपने सुना श्री एस हरिकुमार का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। कार्यक्रम में संगति कर रहे थे मृदंगम पर श्री चंगनाशेरी के आर जैन और घटम पर श्री अंचल एच कृष्ण अय्यर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली आकाशवाणी से प्रसारित हुआ।
1: With that we conclude the violin recital by Shri S. Harikumar in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Shri Changanasheri K. R. Jayan on the mridangam and Shri Anjal H. Krishna Iyer on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে।
1: বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রক্তের প্রয়োজনীয় যোগান সুনিশ্চিত করতে স্বেচ্ছায় রক্তদানের গুরুত্ব অপরিসীম। দান করা রক্তের জলীয় অংশ পূরণ হয় দুদিনে, কণাগুলি পূরণ হয় ২১ দিনে। তা সত্ত্বেও দাতার অতিরিক্ত নিরাপত্তা রক্ষার্থে ছেলেদের ক্ষেত্রে একবার রক্তদানের তিন মাসের মধ্যে আর মেয়েদের ক্ষেত্রে চার মাসের মধ্যে আবার রক্ত নেওয়া হয় না।
2: নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় থাকলে শব্দশ্রুতি মধুর, উচ্চ মাত্রায় তা কেবলই দূষণ।
3: শব্দ দূষণ আটকাতে সক্রিয় হন, দূষণ ছড়াতে নয়।
0: আকাশবাণী কলকাতা গীতাঞ্জলি, এখন দিল্লি কেন্দ্রের খবর।
4: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে কিরণ শর্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
5: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
4: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे ने उधना उकाई सोनखंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार

0: पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ. वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के सम्मेलन की पहली बैठक के समापन सत्र में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर आयोजित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि सत्रों में समिष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, करैकला और तेलंगाना में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ बादल बरसने और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future. Mr. Modi said that India is world's third largest startup ecosystem.
2: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज स्टार्टअप टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
1: Prime Minister Modi said that India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years, which is opening new doors of opportunity for the country's youth. He said such trade agreements pave the way for new partnerships and markets for countries' entrepreneurs and create new career possibilities for the youth. The Ministry of Rural Development will begin training nearly 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most state and union territories from next month. Preparedness for the commencement of training batches was reviewed with 14 states and UTs including Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Himachal Pradesh and Tamil Nadu in the first phase. The ministry said over 3,57,000 rural youth will be trained by the 31st of December next year. Indian Railways has approached Kavach has approved Kavach 4.0 on 607.7 route kilometers of the Lucknow division at a cost of over 250 crore rupees. The project will expand Kavach 4.0 coverage and strengthen train safety. Railways has approved 133 crore rupees for the construction of a four-lane road overbridge on Udna Ukai Songar section of Western Railway, while electronic